0: Ben.
1: Bell. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया दे ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Chaparral, Biprak, Shashwat Sajdev, Sajna Tu Bayman, The Bads of Bollywood. Right, let's do it. The Mystery Voice.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player.
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
0: Who is going to be my hero of the hour and tell me the name of this person first?
4: बंबई जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, मैं तो चाहूंगा कि तुम IAS वगैरह करो. लेकिन तुम जाना चाहते हो ऐसी इनसिक्योर प्रोफेशन में, तो तुम जाके वहाँ अपना गुजारे के लिए नौकरी वोकरी कर लो, ताकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई इतना पैसा. तो खैर फिर यहाँ आके हमें नौकरी ढूंढनी पड़ी, नौकरी मिल गई, फॉर्चुनेटली अच्छी अच्छा काम मिल गया.
0: 07925-700-272, who is that person?
5: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
0: Not even one answer on my screen. I can't believe it. I'll play it again for you after this one. It's Chopra Rao again, this time with Arvan and Wish from Jag Se Laaj.

0: So there you go, a couple of mixes and mashups from yours truly. Hope you enjoyed them. And we'll do the same again on the weekends, where my usual slot is, between 1 and 4. And the mashups are always at 2 o'clock. 2's company. Make it a day. Right, time now for Heads or Tails. I've got two songs, but it's actually one song, two different versions of it. The original and the cover. So which one would you like to hear? So the original is Heads and the cover is Tails. So which one would you like?
1: Is it Heads?
2: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते.
1: Or is it Tails?
2: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते.
1: WhatsApp the studio now, 07925 700 272.
0: Right, get your votes in and the winning one playing next.
1: Sunrise Radio. Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं. मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली. ओपन ट्यूसडे टू संडे.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: दुनिया के एक जाने माने केरला हर्बल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट वैद्य भूषण एस जी अर्जुन 35 साल से आपकी सेवा के लिए लाए हैं ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन फॉर एस्मा, सोराइसिस, डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एसिडिटी, वेट लॉस. उनके पास 300 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल दवाइयां हैं. उन्हें मिलने के लिए आज ही आइए यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, 87 ईरिंग रोड, या कॉल कीजिए 0746697575. That's 0746697575.
6: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What up, man?
7: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
8: I can't believe it. Max has asked me to move in with him. I mean, you practically live with each other already, but that's great. Did you hear that, Joe?
9: Yes. Thanks for letting us know. I see you've updated your universal credit claim. Now you're going to be living together.
10: If you've moved in together, taken on more clients, or inherited some money, it can affect your universal credit. If you're telling someone else, tell us too. Search Tell DWP.
1: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।